6.9 को शानदार डिस्प्ले, AI powered camera, 2 वर्ष को वारंटी सहित Redmi A7 मा 5200 mAh तथा Redmi A7 Pro मा 6000 mAh पावरफुल बैटरी को साथ थप अत्याधुनिक विशेषताहरूले तपाईको मन जित्छ बारम्बार।

0: डिजिटल नेपाल बनाउने हाम्रो अभियानमा सहभागी बनौ र आजैदेखि सजिलो तथा भरपर्दो अनलाइन ब्याङ्किङको फाइदा उठाऊ। मुक्तिनाथ विकास बैंकद्वारा जनहितमा जारी। मुक्तिनाथ विकास बैंक, जनता बैंकमा होइन, बैंक जनतामा जानु पर्दछ।
1: रेडियो भेरी एफएम
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 12 बजेको छ।
3: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी।

0: समर्पित आरोग्य आयुर्वेदिक मेडिकल तथा औषधि पसल गणेश चोक काठको पुल नजिक उत्तर पूर्व सटर सुर्खेत। मोबाइल नम्बर 97 84 36 175 र 98 84 39 576।
1: रेडियो भेरी एफएम

0: रेडियो एरी एफएम 98.6 हर्रे बाटा 102.7 वीरेंद्र नगर सुर्खेत बाटा।
1: बुलबुल बुलबुल बुलबुल एउटा ईरानी चरा बुलबुल कम्युनिकेशन को रात्रि प्रस्तुति बुलबुल बुल